जो इस समय तो लाभ उठा के अपने मन नाल संघर्ष करन नू जुट पैंदे ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने, हां संसारिक कामना मन विच रखण वाले किसे वक्त भी इबादत कर सकदे ने, उन्हां दा अपने मन नाल संघर्ष नहीं आउंदा, बल्कि प्रभु दे कोलों कोई मंग आउंदी है, कोई चाहत आउंदी है। वो चाहत अपनी शक्ति नाल, अपने परिवारिक बल नाल उस वस्तु नू पा नहीं सकदे, तो प्रार्थना दे अगों परमात्मा दे अगों प्रार्थना है। कहिंदे ने जद भी मनुख असफल हो जाए और सफलता उसनू बहुत कोसों दूर दिखाई देवे और अपना बल कम करदा या ना दिखाई देवे, तो फिर वो ईश्वर दे अगों हथ जोड़दा है, हे परिपूर्ण परमात्मा तू मेरी ए इच्छा पूरी कर, तू मेरी ए इच्छा पूरी कर। पर अमृत वेले जो उठ के नाम जप रहा है वो परमात्मा नू इंज नहीं कहिंदा मेरी ए इच्छा पूरी कर, मेरी ए इच्छा पूरी कर, वो इंज कहिंदा हे प्रभु जो तेरी इच्छा होवे उस विच मैं राजी होवां, जो तेरी रजा होवे उस विच मैं राजी होवां। बस यही फर्क है एक सच्चे इबादत गुजार मनुख दे और एक दुनियादार मनुख दे, ये फर्क है। एक कह रहे हे प्रभु मैं सजदा कर रहा, मैं जोदड़ी कर रहा, मैं तेरी इबादत कर रहा, तू मेरी ए इच्छा पूरी कर, तू मेरी ए कामना पूरी कर, तू मेरी ए कामना पूरी कर। करीबन करीबन असी देखते हां एक पिता भी सियाणा है, किस दो तीन साल दे बच्चे दी लोड़ की है, एक साल दे बच्चे दी लोड़ की है। अगर मां नू पता ही नहीं, प्यो नू पता ही नहीं, तो शायद मां बाप एवें बन गए ने ए मां बाप हैं नहीं। इस दो तीन साल दे मासूम बच्चे दी वास्तविक लोड़ां की ने मां समझदी है, प्यो समझदा है, और इस बच्चे नू मंगनी करनी पैंदी क्योंकि अजे विचारा मंगण जोगा भी नहीं, मां पूरी करदी है उसकी मंगा नू। पिता पूरा कर रहा है उसकी जो है लोड़ां नू, जगत पिता परमात्मा नू क्या वाकई नहीं पता कि साडी लोड़ां की ने, साडी चाहत की है, और समय दे मुताबक उम्र दे मुताबक जीवन दे मुताबक साडियां लोड़ां की हो सकदियां ने। अगर ए सब कुछ परमात्मा नू पता ही नहीं, तो जैसे ओ पिता पिता नहीं कहला सकदा जो दो तीन साल दे बच्चे दियां लोड़ां नू नहीं समझदा, वो परमात्मा भी कैसा परमात्मा होवेगा। और क्यों कर उस नू परमात्मा आख्या जाए जिस नू जीवां दी लोड़ां दा ही ना पता होवे। दरअसल सब दियां लोड़ां दा उस नू पता है, सब दा उस नू पता है, और सब दी झोली च लोड़ां दे मुताबक उस दी लोड़ां दे मुताबक वो वस्तुआं पांदा है। और ए गुरु नानक दी सोचनी बड़ी अजीम, वाकई किसे दी झोली च दुख भी पांदा है, ये दुख उसकी लोड़ होंदी, उस तो बिना वह संभलेगा नहीं, उस तो बिना शायद वह सुचेत ना हो सके, उस तो बिना शायद उसके कदम सही मार्ग से जो है ना हो सकन। इस वास्ते आत्म चिंतन करने वाले पुरुषों की बहुत पुराने समय तो यह सूझ समझ बनी कि हे परिपूर्ण परमात्मा जो तेरी इच्छा है वह पूरी होवे। मन नाल संघर्ष करदे आया पहली अवस्था उन्हां दी ए बनदी है, अगर वाकई उन्हां नू जित प्राप्त हो रही है तो मैं फिर अर्ज करा मन नाल संघर्ष की है लोभ नाल संघर्ष, मन नाल संघर्ष की है काम नाल संघर्ष, मन नाल संघर्ष की है हंकार नाल संघर्ष। पत्थर नाल सिर मार के उहदे सुराख कर देना रस्ता बना देना आसान है, अहंकार नाल सिर टकरा के ते अहंकार नू चिकना चूर करना कठिन है, औखा है। अहंकार नू चूर करके जिन्होंने निरंकार दा मार्ग बनाया, लोभ नू मिट्टी दे च मिला के जिन्होंने संतोख दा दीवा जलाया, काम नू शांत करके जिन्होंने अपने अंदर राम नू प्रगट कीता, ए बहुत वड्डे महाबली लोग ने। जिन मिल मारे पंच सूर वीर, ऐसो कौन बली रे, कौन है ऐसा व्यापक महाबली जो इन्हां पंजां नाल संघर्ष करके जित नू जो है प्राप्त होया होवे। तो जद कोई काम नू जित लैंदा है राममई हो जांदा है, लोभ नू जित लैंदा है संतोखमई हो जांदा है, हंकार नू जित लैंदा है निरंकार दी शक्ल सूरत जो है धारण कर लैंदा है, ऐसा संघर्ष उस नू

सब दिवस चार के झूठे करत देवाजा। हे परिपूर्ण परमात्मा, तेरे समान कोई होर राजा नहीं है, तेरे समान कोई होर पिता नहीं है, तेरे समान कोई होर मां नहीं है, तेरे समान कोई होर मित्र दोस्त नहीं हो सकता, तेरे समान कोई होर महान मालिक नहीं हो सकता। सारी जगत दे रिश्ते गुरु नानक देव जी महाराज ने परमात्मा दे निरूपण कीते ने। भाई साहब भाई गुरदास जी का कथन है कि जिन्ने साडे संबंध ने इन्हां संबंधां दे विचों ही परमात्मा दी झलक वेखनी है। मां दे अंदर दुल रही ममता नूं परमात्मा दी दित्ती हुई ममता समझना है, पिता दा दित्ता होया प्यार ऐसा समझना है कि परमात्मा ही ये प्यार दे रहा है, ईश्वर ही ये प्यार दे रहा है। मां नूं ठुकरा के पिता दा दिल तोड़ के अगर कोई बंदा तीर्थां ते भ्रमण करे, दान करे, पुन करे, भाई साहब भाई गुरदास जी ने इसनु कोई महानता नहीं दिती। आप कहंदे ने मां प्यो पर हर सुने वेद, भेद न जाने कथा कहानी, मां प्यो पर हर करे तीर्थ, 68 तीर्थ घुमन वाणी। मां दा दिल तोड़ के प्यो दी बेदबी करके अगर कोई बंदा कथा सुनने वास्ते जाए, भाई साहब कहंदे ने कथा दे भेद नु नहीं समझ सकेगा, इह ते भुल गया। ये जो मां तेनू मिली है ये मां नहीं, ये परमात्मा ही मां दे रूप च तेनू मिले है, परमात्मा ही ममता लुटा रहा है, परमात्मा ही प्यार दे रहा है। अगर परमात्मा ने प्यार देना है, ममता करनी है, तो किस रूप च करे? वो मां दे रूप च कर रहे। परमात्मा ने हमदर्दी जतानी है तो किस रूप दे जतावे? वो पिता दे रूप च जतावे, वो पिता दे रूप च प्यार दे रहा है। इस वास्ते भाई साहब कह रहे ने कि पिता दा दिल तोड़ के जो तीर्थां ते भ्रमण पिया करदा है, मां नूं ठोकर मार के जो कथा सुनन दी कोशिश पिया करदा है, भाई साहब कहिंदे ने रब्बी राज नूं ओह नहीं समझ सकेगा। मां प्यो पर हर करे तीर्थ, 68 तीर्थ घूमण वाणी। ते हुण ऐसा होवे कि माता दे तन दे कपड़े ना होण, पिता दे पैरां दी जुत्ती ना होवे, ते ए बहुत वड्डा दानी बनिया फिरे। भाई साहब कहंदे ने मां प्यो पर हर करे दान, बेईमान अज्ञान पराणी। मां नूं ठुकरा के प्यो दीआं जरूरतां नूं ठुकरा के जिहड़ा बहुत वड्डा दानी बनन दी कोशिश कर रहा है, भाई साहब कहंदे ने परले दर्जे दा अज्ञानी पुरुष है और बेईमान बंदा है। कारण कि इन्हां तमाम रिश्तियां विचों ही ते परमात्मा दा रिश्ता लभना सी, ईश्वर दा रिश्ता लभना सी। इस वास्ते साडे देश दे कोशिश कीती गई कि पहले घर नूं मंदिर बनाया जाए, घर मंदिर, घर घर अंदर धर्मशाल होवे कीर्तन सदा वसुआ। घर नूं ही मंदिर बनाना है, तो घर मंदिर तां बन सकदा है कि मां दे च परमात्मा दी झलक मिले, पिता दे च परमात्मा दा स्वरूप दिखाई देवे, भरावां दे च अकाल पुरख की हमदर्दी दिखाई देवे, मित्रां दे च परमात्मा दी नेड़ दिखाई देवे, और पत्नी दे च परमात्मा दी पत ते शफकत दिखाई देवे, तां ही घर मंदिर बन सकदा है। बड़ी कोशिश कीती साडे देश दे ऋषि मुनिया ने कि जिहड़ी पत्नी है ए पति नूं परमात्मा आखे, ते जो पति है ए पत्नी नूं देवी आखे। हुण इक नूं देवी दिखाई देवे ते इक नूं परमात्मा दिखाई देवे, घर ते मंदिर ही बन गया। आखिर मंदिर विच की हुंदा? देवते हुंदे ने, देवियां हुंदियां ने। पति नूं पत्नी देवी दिखाई देवे और पत्नी नूं पति देवता दिखाई देवे, एक परमात्मा करके बुलावे, एक देवी करके बुलावे, घर मंदिर बन गया। पर जे इस तों उल्ट गल होवे, पति पत्नी नूं भूत दिखाई देवे और पत्नी पति नूं डायन दिखाई देवे, घर ते नरक बन गया। होर किहड़े नरक दे जाण, घर ही दुखां दा अखाड़ा बन गया। घर नूं मंदिर बनाउण दी प्राचीन समय तो एक कोशिश सी, परमात्मा पहले घर दे च दिखाई देवे तां ही बाहर दिखाई दे सकेगा। जिन्हूं घर दे च नहीं दिखाई दिता, उन्हूं बाहर किस तरह दिखाई देवेगा? तमाम रिश्तियां विचों परमात्मा दी झलक वेखनी है, इस तरह की कोशिश भारत दे

करके ही कुदरत सुख मान दी है। परमात्मा का नाम है पूरन। कायनात विच सब कुछ पूर्णता की तलाश दे चाहे और पूर्ण होना चाहता है। जिंदगी का लक्ष्य पूर्ण होना है। तो अधूरी नारी जो पुरुष के अंदर है संपूर्ण होना चाहती है और अधूरा पुरुष जो नारी के अंदर है संपूर्ण होना चाहता है। यही कारण है मनोविज्ञानिक भी इस नाल सहमत ने कि पुरुष के अंदर नारी की कशिश है और नारी के अंदर पुरुष की कशिश है। ये विपरीत तो प्रभावित ने, हम जिन्स तो प्रभावित नहीं। उसका मूल कारण पुरुष अपने तल ते पूरा पुरुष है, उसके अंदर अधूरी नारी है। नारी अपने तल ते पूर्ण नारी है पर पुरुष के तल ते अधूरी है। मां बाप तो यह शरीर आया है, दोहां दी अंश शरीर दे मौजूद है। अस्थूल रूप नूं संपूर्ण करन दा जो ढंग मनुखी दुनिया ने अपनाया उसका नाम आनंद कारज विवाह निकाह आदिक प्रचलित होए। मैरिज का जन्म होया, निकाह का जन्म होया, आनंद कारज विवाह प्रथा जो है चली। इति सी सूक्ष्म शरीर दी पूर्ति, इति सी अस्थूल जगत दी पूर्ति। अस्थूल शरीर नो अस्थूल शरीर दा मिलन हो गया। पुरुष नो नारी मिल गई, नारी नो पुरुष। और पशुओं दी दुनिया च, पक्षियों दी दुनिया च, कीड़े मकोड़ियां दी दुनिया च वो अपने ढंग नाल इस जरूरत नो पूरा करते ने। लेकिन सूक्ष्म तल भी है, नारी दा हिरदा भी है, पुरुष दा हिरदा भी है। स्वाभाविक तल ते देखिए कशिश विपरीत दी है। देवी गुणा नु लईए ए भी नर ते मदीन देच वंडे पैन है। जे भक्ति नारी है तो ज्ञान पुरुष है। गुरबाणी ने ज्ञान नु पुरुष आख्या है, भक्ति नु नारी आख्या है। निज भक्ति सीलवंती नार, रूप अनूप पूरी आचार, जिचर वसी पिता के साथ, तिचर कंद फो फिरे उदास, कर सेवा सतपुरख मनाया, गुर आणी घर में ता सर्व सुख पाया। तो भक्ति नो नारी आख्या है। ज्ञान राव जब सेजे आवे तो नानक भोग करे, ज्ञान नो राव आख्या पुरुष आख्या। अगर गौर नाल देखिए तो तर्क प्रधान है पुरुष के अंदर, भाव प्रधान है, भावना प्रधान है, श्रद्धा प्रधान है स्त्री के अंदर। मन दा टिकाओ भाव नाल होंदा है, मन नूं सूझबूझ ज्ञान नाल मिलती है, तर्क नाल मिलती है। तर्क स्त्री के अंदर अधूरी है, पुरुष अधूरा है। भावना पुरुष के अंदर अधूरी है, स्त्री अधूरी है। अस्थूल जगत ते जद ए अधूरे ने, नारी के अंदर पुरुष, पुरुष के अंदर नारी, तो सूक्ष्म दुनिया भी अधूरी है। या इंज कह लो, ज्ञान तो हीणा हिरदा है नारी दा, भक्ति तो हीणा हिरदा है पुरुष दा। पुरुष के अंदर अगर भावना है, भक्ति है तो अधूरी। स्त्री के अंदर अगर ज्ञान है, तर्क है तो अधूरा। जिथे अस्थूल जगत संपूर्ण होने लई तड़पदा है, उत्थे सूक्ष्म दुनिया भी अपने तल ते बहबल आउंदी है। कल्ली स्त्री, इकल्ला पुरुष संसार नहीं चला सकेगा। परिवार का चलना ही संसार का चलना है। अगर स्त्री पुरुष नो अलग कर देंगे, परिवार अलग हो गया, एक दिन संसार अलग हो जाएगा।
वास्ते स्त्री दे या पुरुष दे त्याग दे उते जिहड़े धर्म खड़े सन वह कोई पायदार नहीं सन, ज्यादा चल भी नहीं सके और उन्हां नाल ज्यादा जुड़ भी नहीं सके। वह समूहक दा धर्म नहीं सी, सारियां दा धर्म नहीं सी, वह कुछ लोगां दा हो सकता है। जैसे महात्मा बुद्ध ते स्वामी महावीर त्याग ते खड़े ने, यह सारियां दा धर्म नहीं हो सकता। सारे ही त्याग करदे ने स्त्री दा और स्त्री त्याग करदे पुरुष दा, तो परिवार खत्म होया। जब परिवार खत्म होया है तो संसार कितने दिन तक चलेगा, इस समाज कितने दिन तक चलेगा, आखिर ये वक्त ही खेट सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो प्रकृति संसार नु चलाए मान रखना चाहती है, ये ताई चल सकेगा परिवार चलन। परिवार चल रहा है तो संसार चलेगा, और परिवार चलता है स्त्री ते पुरुष नाल। पति पत्नी दे सुमेल तो नानके दादके सहुरे जन्म लेंदे ने। रिश्तियां दी ये तीन प्रणालियां दा केंद्र पति ते पत्नी ने, ये रिश्ता टूट जाए ना नानके ना दादके ना सहुरे, तो ये परिवारिक जीवन संसारिक जीवन स्त्री ते पुरुष दे सुमेल तो चलता है। स्त्री दे अंदर जो स्थूल तल ते अधूरा पुरुष है, विवाह दे नाल उसकी संपूर्णता हो जाती है, और पुरुष दे अंदर जो अधूरी स्त्री अस्थूल तल ते निकाह विवाह आनंद कारज इसनु संपूर्ण कर देंदा है, लेकिन सूक्ष्म दुनिया अधूरी रहती है। भावना ते है, श्रद्धा ते है स्त्री दे अंदर, लेकिन तर्क नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान तो बिना ते भावना अंधी होंदी है, ज्ञान तो बिना ते श्रद्धा अंधी होंदी है, और श्रद्धा तो बिना ज्ञान लंगड़ा होंदा है। इंज कह लो, पुरुष दा ज्ञान परमात्मा तक पहुंचण दे असमर्थ है, क्योंकि भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, लंगड़ा है। और स्त्री दी भावना भटकेगी, श्रद्धा भटकेगी, क्यों? ज्ञानहीणी है, तर्कहीणी है। असी देखते हैं बहुता पखंड अगर पूजिया जा रहा है तो स्त्री जगत देच, अगर सच भी ठुकराया जा रहा है तो पुरुष जगत देच, क्योंकि तर्क है, भाव नहीं है। और स्त्री को भाव है, तर्क नहीं है। एक गाथा है कि एक कस्बे नू पिंड नू अग लगी, सारे ते अपनी जान बचा के कस्बे चो निकल गए, लेकिन आमने सामने दो रहण वाले ना निकल सके। एक दे कोल पैर नहीं सन, एक दे कोल अखा नहीं सन, एक अंधा सी, एक पिंगला सी। इस तरह ये दोवें विचारे अग दे चो निकलण दे च असमर्थ रह गए। अंधा टंटोल टटोल के बुए तक पहुंचे है, और यही हाल पिंगले दा सी, बुए ते बैठे। पर इस पिंगले ने अखा नाल वेखे है अंधे नो, और आवाज मार के आख्या, मित्रा मैं तेरे पैरां दा इस्तेमाल कर लेना, तू मेरी अखां दी वरतों कर ले, आपां इस अग तो निकल सकते हैं। कहानी है, अंधे दी पिट ते ये पिंगला बैठ गया, रस्ता दस्ता गया, और रस्ते ते अंधा चलदा गया। इस तरह दोवें अग दे चों निकलण दे सफल होए। हकीकत है, संसार दी अगन दुखां दे चों निकलण दे च स्त्री पुरुष दा सही सुमेल अंधे ते लंगड़े दा मेल है, और दोवें निकल सकदे ने। अंधे नूं पैर मिल जाणगे और लंगड़े नूं पैर मिल जाणगे, अंधे नूं अखां मिल जाणगियां। हकीकत है, ये सच्चाई है।
ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਤੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰੁਕ ਗਏ ਤਾਂ ਜਗਤ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰਹੀ, ਗਿਆਨ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਇਸਤਰੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਪੁਰਸ਼ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਭਾਵਕ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸਤਰੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਾਓ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕੇਗਾ। ਤਰਕ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੱਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਗਰ ਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੱਖ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਗਰ ਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੱਖੀਏ, ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਭਾਵਕ ਹਿਰਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬੁੱਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬਲ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਬਲ ਤਰਕ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਫੈਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਸੁਭਾਵਕ ਔਗੁਣ ਵੀ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਵਕ ਜੋ ਔਗੁਣ ਹੈ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਈਰਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਈਰਸ਼ਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਈਰਸ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ, ਜੈਲਸੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦਫਾ ਘਰ ਨਰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਦੇ ਆ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਘਰ ਮਰਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ, ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਈਰਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਸ ਤੇ ਨੂੰਹ, ਦੇਰਾਣੀ ਤੇ ਜਠਾਣੀ, ਭਰਜਾਈ ਤੇ ਨਿਨਾਹਣ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ। ਯੂਰਪ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਈਰਸ਼ਾ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਤਰਕ ਫੈਲਾਓ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਔਗੁਣ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬਲ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਮਚਾਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਜੈਲਸੀ, ਇਸਦਾ ਟਕਰਾਓ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਦੋਵੇਂ ਸਤਸੰਗੀ ਹੋਵਨ, ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀ ਨਿੰਦਣੀ ਰਹੀ ਹੈ।

सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी शय पंगुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच खैति सच नानक खुशी पी सच कवन बधाई कह सको बे अंत गुणिता कर कृपा

शेर नूं ढेर कर दिता। इना उन्हों का अदब होया। भाई साहब भाई केर सिंह तैयार होए ते इन्हां दे घर होया बच्चा। जदों बच्चा 22 दिन दा सी भाई दरबारा सिंह कहिंदे ने उहदी मां चलाना कर गई, भाई केर सिंह दे घरों चलाना कर गई। ते भाई केर सिंह दी मां ने दरबारा सिंह दी दादी ने रूह दे विच दुध ला ला के बट्टियां नाल दुध पिया पिया के पूड़ियां नाल अपने पोते नूं पालिया, सीने नाल लाया। अज जदों प्यो बापू तुर लगा भाई केर सिंह ते बच्चा आके पुछदा बेबे, शब्द सिद्धे जे वरते बेबे अज बापू किथे चले है। पंजाबी विच जे शब्द वरदे सा बापू जां चाचा, कहन लगा बापू किथे चले है ते कहन लगी पुत्तर तेरा बापू शहीद होण चले है। हस के क्या शहीद होण चले है? कहिंदा बेबे फिर मैं भी जाणा है। उहने हस के क्या कहिंदी पुत्तर नहीं तेरे बापू जाणा है। दही रात मां ने जमाया सी, आप पानी भर के भाई केर सिंह नूं इशनान लई दही दिता। केसी इशनान कीता, कुछ दही बच गया। ते जदों भाई केर सिंह वस्त्र पिया पाउंदा है ते छोटे जे बच्चे दरबारा सिंह ने कपड़े ला के ना अपने निके निके हथां नाल ओ दही अपने केसां विच पाया, कहिंदा बेबे मैनू भी निभा दे, मैं बापू नाल जरूर जाणा। कहिंदे ने बहला माई ने टालिया, अखीर ते इशनान करा दिता, कपड़े भी सोहणे पा दिते। ते जदों भाई साहिब भाई केर सिंह तुरन लगे ना ते माई नूं कहिंदे ने मां आशीष दे, तेरा पुत्र उस गुरु नानक दे घर दी सेवा विच लेखे लग जाए। कहिंदे ने माई प्यार देण लगी। माई दा कद छोटा सी, भाई केर सिंह उच्चे सन ते चौंकी इक पीढ़ी लियांदी ते रख के उह छोटा जिहा बच्चा दादी नूं कहिंदा बेबे पीढ़ी ते खलो के मेरे बापू दे सिर ते हथ रख। जदों हथ रखे ते पीढ़ी खसका के कहिंदा मेरे सिर ते भी प्यार दे। माई ने रोकिया, कहन लगा नहीं मैं शहीद होना है। ते उस वक्त भाई केर सिंह कहिंदे ने दरबारा बेटे, शब्द वरते दरबारा सिंह, रस्ता बड़ा दूर दा, मैं तेनू चुकना नहीं। कहिंदा मैं गुरु नानक साहिब दे आसरे जाऊंगा, सारे राह च मैनू चुकी ना पर मैनू अपनी उंगल पकड़ा के नाल लै जा। बच्चे ने जिद कीती, कहिंदे ने छोटी जी दस्तार बन्नी, तिले वाली कदवी जुत्ती, दादी ने पोते नूं पाई चूड़ीदार पजामा। कदी तको माई दे घर सिर्फ एक पुत्र ते पोता सी, दोनां नूं बूहे तो बाहर तोरिया। किन्नी देर तक माई वेंदी रही अपने पुत्र दी पिठ अपने पोते दी पिठ। कहिंदे ने सारे राह विच भाई साहिब भाई केर सिंह दी उंगल पकड़ के गया। बच्चा राह विच हसदा खेडदा शब्द सुनांदा गया, किते भी नहीं कहा बापू मैनू तंगाड़े चाढ़ लै। ध्यान दिया जे इधर भाई लक्ष्मण सिंह सामनू इशनान कीता ते कहिंदे ने भाई मंगल सिंह नाल तुरे, अपनी घरवाली उहदा नाम सी बीबी इंदर कौर, उह भी नाल आई। घर गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दा स्वरूप सी। देग बना के अरदास कीती, हे धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह, मैं तेरे दरबार तरन तारनिक अरदास करके आया। मेरी कीती अरदास नू भाग लाई, मैं अपने खून नाल तेरे घर विच हाथ नहीं चुकना पर महंत दी बेदबी दा जेड़ा कलंक उह धोणा है। तेरा घर आजाद होवे, जिथे मरदाने दी रबाह वजीए उथे बाबा जी तेरे कीर्तन दियां धुनां उठण। ते अरदास करके जदो हुक्मनामा लिया ते बचन आया सुही महला चौथा, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हूं तिस पै आप विचाई। देखियो कदी गुरु जी बोल के दस दे पए ने भाई लक्ष्मण सिंह, जे तेरी भावना कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हूं तिस पै आप विचाई, दर्शन हर देखण कै दाई, कृपा करे ता सतगुर मिले हर हर नाम त्याई। लक्ष्मण सिंह ए परवाणी के जे सुख दे ता तुझे अरादी दुख भी तुझे त्याई, जे भुख दे ता इती राजा दुख भी सुख बनाई। लक्ष्मण सिंह के तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई। अखां भर के कहिंदा मैनू ए भी स्वीकार है के तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई। पखा फेरी पानी ढोवा जो देवे सो खाई, अखीर ते कहिंदा बाबा करी कृपा, नानक गरीब टह पया दुआरा हर मेल लिहो वडियाई। मेनू गरीब नू अपने चरणा नाल जोड़ ली। गुरमुखो ए मरजीवड़ा शमा तो कुर्बान खोण वाला परवाना घरों तुरिया है, जिनू तवारीख लैंदी दुनिया तक याद करदी रहेगी। आए रात नू तुरे, रस्ते विच एक पिंड तो होर सिंह रलने सन, ओहदा नाम सी निजामपुर देवा सिंह वाला। भाई साहब भाई लक्ष्मण सिंह उस पिंड विच गुरुद्वारे जथा गया, किसी दे घर जथे नू कहिंदे ने आओ अज तुसी नाल नवे रले हो, गुरु ग्रंथ साहिब दे चरणा विच नमस्कार करके फिर हुक्म लै लईए।

जन नानक नाम दीवान है, हर तान सताने हर संतानो खोर थाओ नाही, हर मान निमाने। जन नानक नाम दीवान है, हर तान सताने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, आपने सतगुरां दी इलाही बचन कीर्तन राही सरवण कीते ने, जिथे आपां सतगुरु गुरु रामदास महाराज उन्हां दे पावन पवित्र बचना दी विचार रोजाना करदे आ रहे हैं। उथे अज छठम पीर मेरी पीरी दे दाता अकाल तख्त साहिब दे सिरजनहारे सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दा आगमन पुरब है। ओ सतगुरु जिसने जदो जालम प्यार नाल ना समझे, कुर्बानी देने तो बाद भी ना समझे, ते उसनू कृपान दे मुठे ते हाथ रख के उनू समझाण दा एक तरीका सानू दिता। उस सतगुरु दा अज आगमन पुरब है। आओ गुरु रामदास दे बचन ने ते इस परिवार अंदर गुरता गद्दी गुरु रामदास दे वेले तो ही आई। ताई ता भाई गुरदास ने कहा सी, जान ना देशां सोढ़ियां होरस आजार ना जरे अजावे। आओ सतगुरु दे पवित्र बचन और गुरु इतिहास दी विचार आपां ने करनी।

बच गया ते समझ ली सिरे चढ़ गए हौई ता मारनी है ना। एक दिन मैं शायद अर्ज की बुला अनायत शाह को गया से एक खिन विचो निकलन लगा ते बुले ने जाके कहा सी महाराज मेनू अल्लाह ताला दे घर दी कोई बात सुनाओ। ते अनायत शाह ने कहा खजूर ते चढ़ जा। वो समझ ही पै गया भी अल्लाह ताला की गल ते खजूर एदा की संबंध। फिर उन्हें गल कही भी सजना पुराने सज्जन कहिंदे सन मुरशद की गल मनण विच ही लाभ है। वह कभी चढ़िया नहीं सी सजदा का मुंडा चगड़े अमीर घर का मुंडा वह जी खजूर से थोड़ा जा चढ़िया पैर फिसलिया जमीन से डिगा अनायत शाह वेला पिया डिगा वह ताड़ी मार के हस पिया बुला कहिंदा है मैं मुआ ए मुंह चो शब्द निकलिया मैं मुआ। तो उन्हें एक गल कही बेटा मैं मुआ तो खुदा हुआ बस मैं दी सारा रपड़ी जिदन मैं मर गई तू ही खुदा है मैं मुआ तो खुदा हुआ पर पैंदे अंदर मैं उठी ए आम कहन लग पिया सी आ सिख की लड़ सकते ने जे मैं ना हुंदा ते अमृतसर की जंग नहीं सी जीती जानी मैं ना हुंदा इन्हां ने जित किवें लैणा सी। जिदन गुरु हरगोबिंद साहब नूं पता लगा ते साहब ने एक गल कही पैंदे हर महीने तनखाह मिलेगी घोड़ा देंगा बस्त्र देंगा पर अज तो बाद तू साडे घर विच फौज दे तौर ते तू आउणा नहीं तू घर रह जिदन तेरी लोड़ पई असीं तैनूं जरूर सदांगे। साहिब ने पैंदे तो बिना दो जंगा जितियां श्री हरगोबिंदपुरे वाली ते नथाणे दी ढाब वाली। हुण पैंदे नूं एक गल दस दित्ती मता सोचें असीं खानदानी पठान ही जित सकने आं अज गुरु के सिखां अंदर इन्नी ताकत ही जे गुरु नानक की कृपा होवे जिन्हां नूं कमजोर बोझ दिल कहिंदे ने इह वी जित सकदे ने। पैंदा करतारपुर साहिब भी करतारपुर आए इथे पैंदे खान साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब के दरबार विच आया एक सिख आया उन्हें सोहना घोड़ा सोहनी वर्दी सोहने शस्त्र लेके आंदे पैंदे खान ने कहा महाराज मेनू दे दियो। साहब ने वर्दी दित्ती शस्त्र दिते घोड़ा दिता ते जदों ने पाए साहब ने कहा अज तो बाद तेरी ये साडी दरबारी वर्दी जदों तू साडे कोल आउणा ए वर्दी पा के आउणा। पैंदा घर गया शादी एदी हो चुकी सी एदे घर दमाद एदा रहिंदा जवाई एदा अगे दी बच्ची दी शादी भी हो चुकी है। उस दमाद ने कहा कि ए वर्दी ए घोड़ा मैनू चाहिदा है ते उन्हें पैंदे खां ने कहा मैनू बख्शिश मिली है ये मैं तैनू दे नहीं सकदा। दमाद ने कहा जे ना दिता मैं कुछ खा के मरांगा। पैंदे खां दी घर वाली मूंह जोर सी उन्हें कह के ए गुरु कियां बख्शां जवाई नूं दवा दित्तियां। पैंदे खां आया ना दरबार अंदर पांच छे दिन नहीं आया चौथा जंग क्यों होया पांच छे दिन नहीं आया। गुरु हरगोबिंद साहब ने कहा पता तो करो पैंदा क्यों नहीं आया इधर बाबा गुरदित्ता जी शिकार खेडन गए उधर पैंदे दा जवाई वर्दी ओही पा के घोड़े ते चढ़ के शिकार खेडना इनू पता है साडे घर दा डिसिपलिन की नियम है तू वर्दी ते घोड़े ते क्यों नहीं आया। कह लगा महाराज जदों सिख बुलाण गए मैं मैले कपड़े पाए सन उठ के आ गया। साहब ने कहा भी नहीं पता करो पता किया दमाद नूं वर्दी घोड़ा दे चुका है। साहब ने कहा तू झूठ क्यों बोलिया बजाए के झुकण दे। कहिंदा अज तक मैं चुप करके रहा देखो मैं तुहाडे नाल टक्कर लाँगा। गुरु हरगोबिंद साहब नूं कहिंदा मैं कुछ दिनों तक तुहानूं करतारपुर की धरती तो खत्म कर देवांगा। सिखां ने फिर झिड़किया विधि चंद वर्गिया ने कुछ कहिंदे ने दो चार लाइया नहीं उन्हें कहा मैं इस बेजती का बदला लेना है। यह गया जलंधर उथे जाके उस्मान खान नूं कहा कि मेरी मदद कर। उन्हें एक गल के कहिंदा इन्ना नमक हराम ना बन तेनू यतीम नूं कोई थां नहीं सी दिंदा ते गुरु हरगोबिंद ने तेनू पुत्रां दी तरह पालिया तेनू अपने बच्चियां दी तरह उन्हें दुध मिलाइया घ्यो दिते अज उन्हूं खत्म करन तुरिए पर यह ना मनिया। लाहौर गया लाहौर वजीर खां सी वह गुरु का सिख सी उन्हें पैंदे की कोई पेश ना जान दिती। मुकदी गल की जी ए भी फौज लैके आ गया इधर गुरु हरगोबिंद साहब ने तैयारी की थी ते सिख विद्वान कहिंदे ने इस करतारपुर की धरती से गुरु के महिला ने मातावां ने गुरु के परिवार दियां इस्त्रियां ने आप चबारियां ते खलो के जंग देखी थी आप जंग तकी। पैंदे खान एक गल कहिंदा गुरु हरगोबिंद साहब नूं मारना मामूली जी गल जंग आरंभ होई है गुरु हरगोबिंद साहब महाराज भी आए पैंदा भी सामने आया सारा दिन शमशान युद्ध होया इस युद्ध विच मेरे गुरु तेग बहादुर ने अपनी तेग दे जोहर दिखाए ने। करतारपुर की चौथी जंग दे विच करतारपुर ही गुरु तेग बहादुर जी का आनंद कारज होया सी गुरु हरगोबिंद साहब सामने पैंदे ने देखे।

खाने के पता लग जाए गुरु नानक दी बाणी गाउण वाले कोल भी इन्नी ताकत है ओ आरे दे दंदे जल के भी खिड़के मते इस मुसीबत नू प्रवान कर सकदा है। भाई मती दास नू जदो आरे नाल चीरन लगे ते उस वक्त कहिंदे ने ओ काजी हुण देरी ना कर तू चीर दे। पुछया तू खुश क्यों वे? कहन लगा देख सुहागण दा चिन्ह हुंदा है जेड़ी आम तौर ते दुनिया विच सुहागण है ओ अपने केसा विच संदूर पांदी है पर जिन्हें प्रीतम दी सेज नू मानना है ओ अपने पति विच अपने शीस विच खून दा संदूर पांदा है। तू छेती कर मैं अपने प्यारे दी प्रीतम दी सेज नू मानना। उस वक्त उन्हें एक गल पुछी तेरी कोई अंतम इच्छा है? याद रख एक पासे आ रही दूजे पासे दुनिया दे सुख नहीं। भाई मती दास ने उते एक गल कही कहिंदा सजना मैनू आरा चंगा है। एक विद्वान ने बड़ी सोहनी लिखी गल सिंह साहब ज्ञानी प्रताप सिंह ने नू दर्ज कीता है। वो लिखता है दो उंगलां जे शीश विच आरे पाया चीर मती दास जी बोलते सुन काजी धर पीर रोम रोम विच मेंडड़े प्रीतम मस्या आप। मेरे रोम रोम विच मेरा गुरु है रोम रोम विच मेंडड़े प्रीतम मस्या आप आरा मेनू पौंदा धर्म छड़ना पाप टुकड़े इस शरीर दे करें जे लाख करोड़ तापी दीन ना छोड़ सा। कह लगे तापी धर्म ना छोड़ सा तेरा दीन नी लोड आरा प्यारा लगत है कारा करो बनाए सिर जांदा ते जान दे मेरा सिखी सिदक ना जाए। मेनू सिर की परवाह नहीं पर ताको सिखा चांदनी चौंक तो कुछ ओ ता कहिंदा सिर चला जाए मेरी सिखी ना जाए ते असी केड़े रस्ते ते तुर पए आ। असी कहने सिखी बेशक चली जाए पर दुनिया दा सुख ना मेरे कुल जाए। सिखी दी मर्यादा चली जाए सिखी दे हुक्मनामिया दी कोई परवाह नहीं पर मैं अपने अंदर दी होमे नू कायम करना है। जे पुछने ता पुछ के जा चांदनी चौंक तो ओ कहिंदा सिर जाए पर मेरे सिखी दी मर्यादा ना जाए। भाई मती दास ओनू पुछया तू ए सिखिया किवें में? भाई साहब ने उत्थे एक शब्द पढ़िया ते गुरु ग्रंथ साहब दे राग आसा विच शब्द है। कहन लगे कि गुरु वालों तेरी पिछ कर दईए तैनू दुख लगता है? भाई साहब कहिंदे ने सजना मेरे गुरु ने एक शब्द मैनू पढ़ाया कहिंदा सिखा गुरु होवे सामने ते सिर ते चलदा होवे आरा ते आरे दा ओना दुख नहीं उदो दुख लगता है आरे नालों वध जदो सिख अपने गुरु वल पिछ करके गुरु वालों मुंह पुहा लैंदा। उथे उन्हां बचन क्या कहन लगे करवत भला मैनू आरा प्यारा लगता है करवत भला। ध्यान रखना शब्दां दी व्याख्या सिख दा जीवन करदा है। करवत भला नाल कहिंदे ने ना करवत तेरी आरे नू हाथ ला के कहिंदे ने करवत भला मैनू आरा प्यारा है ते गुरु तेग बहादुर वल अत करके कहिंदे ने ना करवत तेरी तू मेरे वल पिछ ना करी। मेरे सतगुरु आरे नालों उदो वध दुख लगना है जदो तू मेरे वलो मुंह मोड़ लिया। करवत भला ना करवत तेरी लाग गले सुन बेनती मेरी तुर लगा वा मेरे सतगुरु एक असीस दे गले ना लग के पिंजरा रुकावट आ गया है। ते सर कहिंदे ने नहीं मती दास तेरा मेरा संबंध अंदर दा देहा दा नहीं मैं तेरी आत्मा नू अपनी अंदर दी परम आत्मा दी कलवकड़ी विच लांगा। ते उस वक्त मती दास कहिंदा हां वारी मुख फेर प्यारे करवट दे मोको काहे को मारे। ते अगली पंक्ति सी जो तन चीरे तो अंग ना मोरू पिंड पर है तो प्रीत ना तोरू जे टुकड़े टुकड़े कर दे ते सतगुरु मेहर करी तेरे इस मती दास दे टुकड़िया विचो किते तेरी प्रीत बिसर ना जाए। भाई मती दास सामने ने ते पुछे काजी ने हुण तेरी इच्छा की है? भाई मती दास बोले कहिंदे ने दो ने पूरियां कर देंगा। कहन लगा दस कहिंदा एक ता मेरा मुंह मेरे प्रीतम वल करी ते दूसरी मेरी इच्छा है आरे नू एना तू ऐसा ऐसा चलाई जिन्नी देर तक मैं जपजी साहब दा पाठ ना पूरा कर लवा उन्नी देर तक मेरी जबान नू कटी ना। कहिंदा हद हो गई? कहिंदा हां मेरी रसना नू मेरी जबान नू कटी ना मैं गुरु का कलाम पढ़ना। ते ओ पुछदा क्यों? ते गुरु तेग बहादुर कहिंदे ने काजी एदे टुकड़े हो गए इन्हें जमना ते मरना नहीं ए इस करके जपजी साहिब पढ़दा है इन्हें उस थां ते पहुंचना है जिथे गुरु नानक कहिंदा सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नजर निहाल ज्यों ज्यों तेरे आरे ने एदे शरीर भी जाना है

नानक होशी की सच तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा जब गुर बोले तब विषम हुए जाए।

जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ा तू गुर पिता तू है गुर माता तू गुर बंधक मेरा सखा सखा जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जान हो आपे हम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे तन तन गुरु नानक जन केरा जित मिले।

चले गए। कुछ कूकेज ने 2,000 के करीब गुरु गोबिंद सिंह के केवल सिख ने, इधर 10,000 की फौज ढाई करके आई ते साहब ने मैदान चुनिया पगाणी का, पौटा साहब दे नेड़ी। अज ओ स्थान बन चुका है जिथे ए युद्ध होया है। कदी जायो थले दीवे थां ते इक कबर भी है, इक द्योरा भी है, ओ हरिचंद जिदा अगे जिक्र आउणा है गुरु गोबिंद सिंह दे तीर नाल विन्निया गया। एक एक चीज जिहड़ी है जदों भी इतिहासिक थां ते जाओ ना, भावां लिखिया बहुत कुछ हुंदा है पर उत्थे बजुर्गां नूं मिल के पुछ के देखो ते चेते रखो, बहुत घटनावां ऐसियां ने जिहड़ियां सानूं उत्थे लोकां कोलों मिल गईयां जो लिखतां विच नहीं। साहब गुरु गोबिंद सिंह ने पौटा साहब छड़ दिता, पंगाणी की थां ते आ के एक गोल गतारा बना लिया। 10,000 की फौज आई, साहब ने अपने पंजे भुआ दे जिहड़े पुत्र सन उन्हां नूं तैयार किया, आप उच्ची तिब्बी ते खलो गए। कृपाल उदास जिहड़ा उदासी सी इह वी साहब दे कोल खलोता, उधरों पहाड़ियां विचों अगवाई करदा आया फतेह शाह। साहब देख के मुस्कुरा पए, ये ओही बंदा जिहड़ा कल तक मेरे नाल सुलह करके चरणा थले हथ रखदा सी, अज ओह गुस्से विच भरिया होया गुरु नूं तबाह करन आया। ते ये विद्वाना ने नहीं, गुरु गोबिंद सिंह जी ने बचित्र नाटक विच इस युद्ध का जिक्र किया। साहब कहते ने सब तो अगे इन्हां 400 पठान लाए, ये पठान पहुंचे, इन्हां दा आगू सी हयात खां। हयात खां ने जदों हल्ला किया ते गुरु के भुआ दे पुत्रा पंजा ने एहो जी तीर दी बाछड़ लाई कि पठान दा मूंह मोड़ के रख दिता। पिछा नूं मुड़े ते फतेह शाह कहिंदा, पठान जी तुसीं कहिंदे सो सारे उन्हें जट बूट कमी कमीन कट्ठे कीते ने, लड़न वाला ही कोई नहीं, लुट तां सारी तुहाडी है पौटा साहब दी, पहली वार नहीं तुसीं चल चके, पिछा नूं मुड़े अगे नूं होवो। कह लगे हयात खां ललकारा मार के लै के अपनी तलवार अगे निकलिया। हुण देखो गुरु की करामात, कोल महंत कृपाल दास उदासी खलोता सी, कहिंदा महाराज ए ओही हयात खां नमक हराम है जिन्हें तेरे घर दियां रोटियां खा के अकिरत कणता कीती। ते पुछिया साहब कहिंदे ने तू की सोचना, कहिंदा लड़िया ते मैं कदी नहीं पर एक वारी असीस दे इहदे नाल मैं दो हथ करदे चाहना। कदी तको गुरु गोबिंद सिंह दी रहमत, सिखा यकीन कर दृढ़ अराध्या वालियां दी जित पैर चुमदी है, जेड़े लोग अराधी ढा के बह जाण ओह जिते होए भी हार जांदे। आ साहब ने बाणी विच कहा नहीं, निश्चय कर अपनी जीत करूं, एक निश्चा भरोसा ही ऐसा है जेड़ा बंदे नूं जित तक लै जांदा, जदों अंदरों दृढ़ता ही मुक जाए ते फिर चेते रखो जिते होए भी घरां नूं हार के आ जांदे। हयात खां कहिंदा महाराज असीस दिओ मैनूं, ते साहब गुरु गोबिंद सिंह दे दर विच पहले दिन अज कृपाल दास वाहगुरु कृपाल दास उदासी हयात खान नाल टक्कर लैण लई घोड़े ते सवार होए है। साहब ने कहा कृपान नेजा बरसा कोई नागनी कोई तीर, कहिंदा बस तू असीस दे दे, सारी जिंदगी सोटे ही चलाया है, आ सोटे ही मेरे हाथ विच है, तू नजर करदा रही देखी अज इस साध दे कारजां ने। साहब ने असीस दे के जदों तोरिया ना ते सामने हयात खां आया ललकारे मारदा, ते कहिंदे ने इक्को दम हट पए। पठान कहिंदे ने देख गुरु का सूरमा ढिलर जे आउंदा पिया, शरीर का भाड़ा सी थोड़ा जिहा मंद, कहिंदा देख ढिलकवां शरीर तुरिया आउंदे गुरु का जरनैल। हयात खां टिचर करके कहिंदा बाबा जी सचखंड के बूहे ते जाके दस्तक देनी चाहते हो कि साडी जन्नत भी जाना चाहते हो? कहन लगा हयात खां तू वार कर, मैं तेरा मुकाबला करना आया। साहब गुरु गोबिंद सिंह टिब्बी ते खलो के तकदे ने, हयात खां ने फिर मजाक कीती, जा बाबा जा के माला फेरिया कर, ते गल विच उन दी माला, जा के माला फेर, तेरा कम लंगर पानी छक, तू कित्थों मेरा मुकाबला कर लेगा, असी तां कई पुश्तां तो सूरमे तुरे आउने आ। उस वक्त कहिंदे ने हयात खां नूं बाबे ने अखीर दी गल कही, कहिंदा जे अम्मा दा पठाणी दा शीर चुंघे ही ना, भावें मैं बाबे नानक दा घर दा साध गुरु गुरु जपण वाला वा, पर चेते रख जे तेरी ताकत है तां मेरे ते 3 वार पहला कर ले। उस उदासी बंदा लगोट बन्निया बंदा कहिंदे ने हयात खां ने पहला वार कीता ते उस वक्त कृपाल दास ने रोक लिया, दूजा वार कीता फिर रोक लिया, तीजा वार कीता फिर रोक लिया, ते गुरु गोबिंद सिंह देखते पए सन। कृपाल दास ने इक्को दम घोड़े दियां लगामां छड़ दित्तियां ते रकाब उत्ते खलो के पैरां दे पार

मैं पीता ना जाता हराम खोर हूँ क्या मुख देशा हूँ क्या मुंह देशा दुष्ट चोर नानक नीच कह विचार तान रूप रहा करता सब जियो पिंड मुख नक दिया वर्तन को पानी अन्न खाना कपड़ पहन दिया रस अन्न भोगानी अन्न खाना कपड़ पहन दिया रस अन्न भोगानी जिन दिए सोचित ना आवही पशु हों कर जानी ना हों जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म भया परमवत नानक दिन की शरणा जिन तो नाही विषया परमवत नानक तिन की शरणा जिन तो नाही विषया परम सम्मान योग सैल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी है पावन पवित्र हजूरी अंदर सोभायमान गुरु सवारे सत संगी जनों अज हफ्तावारी जो विशेष दीवान सज रहे ने इस दी हाजरी आप जी ने पढ़ी है अमृत बचना दा कीर्तन गुरु सवारे असानू सरवण करा रहे सन और कीर्तन दा प्रकरण केवल एक सी मेरे लाल जीओ तेरा अंत न जाना तू जल थल मैयल पार को लेना इस ही केवल विषय ऊपर गुरमुखा ने कीर्तन किया आओ इसे नु ही आधार बना के आप जी नाल कुछ समा गुरमत विचारां दी सांझ पानी है अपने थुरलियां नु अपने अंदर नु टिकाण दा यतन करिए गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह आप जी ने टिक के जदों कीर्तन सरवण कीता ते पाईशन हुई हजूर दा ओ वचन आप नु सांझा कर रहे सन हे मेरे करते पुरख वाहिगुरु जी पहली गल अज टीकरा तेरा किसी ने अंत नहीं पाया दूसरा वचन पानी विच झाती मारना वा जल विच भी तू है थल विच भी तू है पुलाड़ विच भी तेरा अपना ही स्वरूप है ते हर एक दे अंदर तेरी अपनी जोत टिकी है इस गल नूं आपां सारे चंगी तरह समझने हां कि गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी ने
परमात्मा नूं किसे एक थां ते निश्चित नहीं केवल कीता कि इस थां ते परमात्मा रहिंदा है, इस तों बाहर परमात्मा नहीं। ना किसे चार दीवारी नूं, ना किसे मरी नूं, ना किसे कबर नूं, ना धरती दे एक टुकड़े नूं इह नहीं कहा कि परमात्मा केवल इत्थे रह रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब